0: हेलो तुया ने गए
1: एवरिस्ट
0: उड़ा मच जाए हेलो एवरिस्ट रे खून से फिर चाची जे